0: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.
2: जीली मकार्थर की साल के अंत की डेमो क्लियरेंस सेल अब शुरू हो गई है. इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए 3 साल की मुफ्त सर्विसिंग, $2,000 का शानदार ट्रेड इन बोनस, साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त. जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI. ऑफर 30 जून तक ही मान्य है. आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए. नियम एवं शर्तें लागू. ND5411.
3: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर.
4: मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की महत्वपूर्ण खबरें. आज यानी 28 जून 2026 रविवार, युगाब्द 5128 विक्रम संवत 2083 जेठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें. ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए. ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मई 2025 में हुआ था, में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम सरकार ने आधिकारिक रूप से जारी किए हैं. यह पहली बार है जब इस ऑपरेशन में हुए बलिदान की औपचारिक पुष्टि की गई है. नामों का नेशनल वॉर मेमोरियल की रोल ऑफ ऑनर सूची में शामिल किया जाना है. यह कदम सैन्य पारदर्शिता और शहीदों के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में सभी 8 आरोपी गिरफ्तार. दान राशि के गबन और धोखाधड़ी के आरोपों वाले मामले में FIR में नामित सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इनमें ट्रस्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के करीबी लोग भी शामिल हैं, जिससे ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारी चंपत राय पर दबाव बढ़ गया है. यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से चर्चा में है. विशेष मतदाता सूची संशोधन में 6 करोड़ नाम हटाए गए हैं. स्पेशल इंटेंसिव प्रिवेशन SIR के तहत देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा जारी है. अब तक लगभग 6 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और पारदर्शिता की कमी होने के आरोप लगाए हैं. यह प्रक्रिया 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनी हुई है. भारतीय LNG जहाज दिशा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया. इराक अमेरिका युद्ध विराम के बाद पहली बार किसी देश का LNG जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा और वो भारत का LNG करियर दिशा था. यह वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्ग है. भारत दुनिया के सबसे बड़े LNG आयातकों में से है, इसलिए यह घटना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. मणिपुर में फिर तनाव, भीड़ ने अस्पताल को घेरा. मणिपुर में जातीय तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जब इम्फाल के रिम्स अस्पताल में घायल कुकी युवकों के इलाज को लेकर भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया. यह घटना बताती है कि राज्य में शांति प्रक्रिया अभी भी नाजुक है और हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. दिल्ली में तेज हवाओं के साथ रेड अलर्ट, IMD की चेतावनी. दिल्ली में इस सप्ताह 92 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाएं चली, जिसके बाद IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने गंभीर तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी, जिससे शहर में पेड़ गिरने, ट्रैफिक बाधित होने और बिजली कटौती जैसी समस्याएं सामने आई. आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरें. ऑस्ट्रेलिया में एम्बुलेंस रैंपिंग संकट गंभीर, AMA की चेतावनी. ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन AMA ने चेतावनी दी है कि देश में एम्बुलेंस रैंपिंग यानी मरीजों को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही लंबे समय तक इंतजार करना गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है. कई राज्यों में मरीजों को घंटों तक स्ट्रेचर पर ही रखा जा रहा है, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव है. यह मुद्दा भारतीय समुदाय में भी चर्चा में रहा क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। एनएसडब्ल्यू सरकार ने बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट सहायता पर $20.4 मिलियन की घोषणा की। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट सपोर्ट सेवाओं को मजबूत करने के लिए $20.4 मिलियन की नई योजना शुरू की है। इससे सुनने में कठिनाई होने वाले बच्चों को बेहतर तकनीक, थेरेपी और फॉलोअप सेवाएं मिलेगी। भारतीय मीडिया में इस खबर को महत्वपूर्ण दिया गया है। भारतीय मूल के कई परिवार इस सेवा का लाभ उठाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेड पेरेंटल लीव 1 जुलाई से 26 सप्ताह का होने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से पेड पेरेंटल लीव को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाएगा। यह देश के परिवार हितैषी कानूनों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय मीडिया ने इस खबर को काफी प्रमुखता दी है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी युवा परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पॉलिन हैंसन ने SBS को बंद करने की मांग दोहराई। बहुत सांस्कृतिक समुदायों में चिंता। वन नेशन पार्टी की नेता पॉलिन हैंसन ने फिर से मांग की है कि SBS स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बंद कर दिया जाए या उसकी फंडिंग कम की जाए। उन्होंने दावा किया कि SBS बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा देने में असफल है। इस बयान से भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और अन्य प्रवासी समुदायों में चिंता बढ़ी है क्योंकि SBS उनकी भाषाओं में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करता है। लीन फॉक्स ने मेलबर्न में इलेक्ट्रिक ट्रकों को सेवा में उतारा। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी लीन फॉक्स ने मेलबर्न के पश्चिमी हिस्से में इलेक्ट्रिक ट्रकों की को सेवा में उतारा है। यह कदम सरकार के समर्थन में उठाया गया है और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा परिवहन क्षेत्र को हरित बनाना है। भारतीय मीडिया में यह खबर इसलिए आई क्योंकि भारत भी लॉजिस्टिक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन पर तेजी से काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेशी धमकी इंटिमिडेशन की शिकायतें दर्ज कराने की अपील की। सरकार ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या समुदाय को विदेशी सरकारों द्वारा धमकाया, मॉनिटर किया या चुप कराने की कोशिश की जा रही है तो वह तुरंत उसको रिपोर्ट करें। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रवासी समुदायों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भारतीय समुदाय ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। आइए अब जानते हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की। अमेरिका ने कड़ा दबाव दिया। ईरान ने इजराइल के लेबनान में जारी हमलों से नाराज होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की। यह वही मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी भी देश का दावा स्वीकार नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता फिर शुरू होने की संभावना। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता 21 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में शुरू होने की संभावना जताई गई। यह वार्ता क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस में भीषण हीट वेव, रेड अलर्ट जारी। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचने के बाद सरकार ने देश के एक तिहाई हिस्से में रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस दौरान शराब सेवन और प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। यह यूरोप में इस साल की सबसे खतरनाक हीट वेव मानी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण। अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमले में ईरान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान के बहुशहर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। यह घटना पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। हालांकि खामेनेई की मृत्यु काफी पहले हो गई है, बट इस अंतिम संस्कार को अब किया जा रहा है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर मलेशिया और फिर चीन गए। बीजिंग में व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं मुख्य एजेंडा रहेंगी। यह यात्रा दक्षिण एशिया की कूटनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया है। इनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं और यह ऑपरेशन वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
5: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आपने रंजना रमन जी से समाचार सुने। आशा है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि हुई होगी। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान भी हैं और हम दुर्गा शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। सब के बारे में आपको बताएंगे कि हम किस दुर्गा शक्ति की बात कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए यतीन्द्र जी आएंगे, उनसे भी बात होगी। और हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं और काफ़ी अच्छी और ज्ञानवर्धक हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका ज्ञान काफ़ी गहरा है। अच्छा, इसके अलावा हम सोशल मीडिया डे 30 जून को है, तो सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे शैलजा जी।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और इसके अलावा हमने रोमांटिक गीत चुने हैं 1970s के,
6: आपकी पसंद के।
5: आपकी पसंद के, बिल्कुल बिल्कुल, आपको पसंद आएगा। और ये है कि इसके अलावा हम और भी तरह तरह की बात करेंगे हमारे।
6: और प्राइस,
5: अच्छा हाँ, प्राइस
6: टिकेट,
5: टिकट भी
6: तो
5: है।
6: बहुत बड़ी, इसीलिए तो कितने हमारे श्रोता हैं, इसीलिए कान लगाए हुए हैं।
5: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाता रहे मेरा दिल, इस नाम से केदारनाथ जी ने अपना कार्यक्रम रखा है 4 जुलाई को। उसके 2 टिकट हम देने जा रहे हैं और हम देंगे उस सज्जन या सज्जनी को,
6: सज्जनी को
5: जिस मतलब आप समझ गए होंगे,
6: आप
5: जो कि सबसे अच्छा कमेंट लिखेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सुनते रहिए और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते रहिए। अगर आप चाहें तो हमें वैसे फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे जो डिस्कशन हो उसमें कंट्रीब्यूट करें। और तो शैलजा जी,
6: आप भजन सुनाइए पहले। तो
5: भजन से पहले हम तो आज का विचार सुनाएंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और आज का विचार भी रंजना रमन जी ने भेजा है, बहुत ही सुंदर विचार है।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं रंजना रमन आपके लिए लेकर आई हूँ आज का प्रेरणादायक विचार। सफलता की कुंजी दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, तभी असली प्रगति शुरू होती है। हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमने खुद को अपने कल से कैसे बेहतर बनाया है। धन्यवाद।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो दोस्तों, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, 2-3 दिन बचे हैं। तो हमने इसीलिए अपने एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है टैक्स प्लानिंग के लिए। तो यतीन्द्र गुप्ता जी का यही काम है, इनकी रोजी रोटी यही है। और यतीन्द्र जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद प्रदीप जी, और धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ये जो है ना, इसी समय हम लोग पूछ ज़्यादा होती है।
1: नहीं नहीं, आपकी पूछ तो काफ़ी बढ़ा दी गई है
2: जी, आई नो,
1: क्योंकि GST का चक्कर ऐसा चलाया गया है कि अकाउंटेंट्स की पूछ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है।
2: वैसे तो क्या है कि सारे लोग इस गवर्नमेंट से गुस्सा हैं, एक ही लोग खुश हैं जिनका नाम है अकाउंटेंट।
3: अकाउंटेंट इस चीज़ से खुश हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में धुरंधर एक और आ गए हैं, यतीन्द्र जी, और वो खुद अकाउंटेंट हैं, इसलिए कह रहे हैं अकाउंटेंट तो बहुत खुश हैं।
2: कि जितनी वाकई में इतना कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था इस तरीके से कोई गवर्नमेंट बिहेव करेगी, लेकिन करा। और उसमें ग्रीन का शामिल होना, तो जो अभी जो चेंजेज हो रहे हैं वो 2027 से शुरू होंगे।
3: अच्छा,
2: तो ये 26 का जो है वो पुराना वाला है। तो फिर भी अभी 2 दिन हैं और लोग काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दर्पण रेडियो की कोशिश हमेशा यही रहती है कि कैसे हम अपने श्रोताओं को हेल्प करें।
1: अच्छा, ये बताइए फ़ायदा कैसे उठाएं?
3: बिल्कुल
2: जी। तो एक तो सुपर फंड में आप $30,000 तक डाल सकते हो। तो जैसे किसी की तनख्वाह है मान लो 1 लाख, तो उसको 12,000 मिला, तो 18,000 वो अपनी जेब से डाल सकता है और उसको क्लेम कर सकता है। तो सुपर फंड में 15% टैक्स देना होगा उसको, यहाँ पे समझो वो 30% करता है, तो 15% ऑलरेडी बच गए।
1: ठीक है,
2: तो 18,000 पे 15%,
1: तो ये 2 दिन में कर सकते हैं वो लोग।
2: 2 दिन में कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर करना है, अगर आपका SMSF नहीं है तो अपना जो भी, जैसे मान लो AMP है आपका, तो उसको लिखना होगा कि यू हैव इंटेंशन टू क्लेम, दिस इज़ ए कंसेशनल कंट्रीब्यूशन। आप लिख लो, उनको इंटेंशन बोलना होता है कि आपने ये पैसा डाला है टू क्लेम एज ए डिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यू कैन मिस इट। आपने जमा भी कर दिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा।
1: यतीन जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है।
2: अभी कैसी है?
1: और पास आ जाइए।
2: अभी ठीक है,
1: अब बहुत बढ़ गया।
3: तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करना होगा, इसका मतलब कि 2 दिन बाद ये टैक्सेशन जो है 15% से ज्यादा हो जाएगा क्या?
2: नहीं, 2 दिन फिर वो बेकार हो गया आपके लिए। 30 जून इज अ क्लिक। तो अगर आपको चाहिए तो आज ही आप डाल दो, भले ही आज संडे है, और फिर वो इमीडिएटली कल सवेरे आप उसको इंटेंशन डाल दो कि भाई ये मेरा इंटेंशन है टू क्लेम दिस मनी एज ए डिडक्शन, एज ए कंसेशन।
1: लेकिन ये ध्यान रहे कि 30,000

0: से अगर ज्यादा हो गया तो आपका जो टैक्स थोड़ा सा उस पर जो
1: हाँ वो
0: एक्सेस होगा
1: फिर
0: ज्यादा
1: हाँ
0: ज्यादा होगा।
1: वो होता है। तो इसमें एक्चुअली एक और होता है, मान लो किसी गलती हो जाती है, चलो आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि समझो एक गलती हो जाती है, आपने 30,000 आपने सोचा था 12,000 होगा, लेकिन आपका ज़्यादा था उसमें, और समाव आपने $10,000 ज़्यादा डाल दिया, तो वो 10,000 को आप नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन तरीके से उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, तो नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन क्या होता है शैलजा जी, कि जो आफ्टर टैक्स आपकी मनी होती है उसमें से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सुपर उसमें 15% नहीं पे करता है, और इस तरीके से हो जाता
0: क्योंकि वो टैक्स्ड होता है ऑलरेडी।
1: है, ऑलरेडी टैक्स होता है।
0: अच्छा, उसमें एक वो भी रूल है कि 3 इयर्स वाला कि
1: हाँ, अगर
0: आ,
1: 3,60,000 आप डाल सकते हो, अगर आपको मान लो समझो अभी ये लोन बंद कर रहे हैं SMSF में ना,
2: हाँ
1: तो समझो आपने एक करोड़ प्रॉपर्टी लेनी है, और आपने तो 3,60,000 अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो 7,20,000 आप डाल सकते हो। अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्ले करो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1,20,000 अभी डालिए, और 1 जुलाई को फिर आप तब तक और बढ़ गया एक्चुअली, 3,60,000 तो आप लगभग 9,60,000 डाल सकते हो ऑलमोस्ट, अभी क्योंकि लिमिट भी बढ़ गई है अगले साल से।
0: जितेंद्र जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो मूंगफली
2: मूंगफली वाला जो है एक निकाला तराजू में एक रखा
0: कि 3,60,000 आप ले लीजिए, फिर 7 लाख ले लीजिए, मतलब ये है। रुपए की बात तो नहीं कर रहे ना, डॉलर की बात कर रहे
1: सॉरी सॉरी जो देखिए ऐसे है कि हर आदमी की सर्कमस्टेंस अलग होती है।
0: हाँ बिल्कुल
1: अगर आप इसकी प्लानिंग की तरीके से, इसका मैं थोड़ा सा चुन रहा, आपने इसको बोला है
0: अकाउंटेंट की बात दूसरी होती है वैसे।
1: नहीं, मैं ऐसे प्रदीप जी बोलता हूँ कि समझो कि 1 मिलियन आपके पास में, 1 मिलियन आपके सुपर फंड के पास में, दोनों का टैक्सेशन में बहुत फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इस कंट्री में अगर आपने टैक्स को लीगली बचा लिया, यू आर लाफिंग ऑल द वे, बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास में क्लाइंट आते हैं, कभी कभी मुझे दुख होता है कि उन्होंने प्रॉपरली एडवाइस नहीं ली, दे आर मिलियंस ऑफ डॉलर बिहाइंड फॉर नथिंग। गवर्नमेंट आपको घर में एडवाइस तो नहीं करने आएगी।
0: नहीं बिल्कुल ठीक है, और ये है कि मुझे लगता है इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का इस तरह से नुकसान हुआ है उनके ऑलरेडी पैसे काफ़ी हैं उनके पास।
1: आप
0: है ना।
1: हाँ, अगर आपके आपके दिल में ये है कि भाई आशीष के उसको आप मेहनत करिए, आप इकट्ठा करिए, आईएसएस वालों को भी देना है, NDIS वालों को भी देना है, सेंट्रल लिंक वालों को भी देना है, तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए।
0: हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। खैर हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे ज़्यादा, लेकिन ये है कि और बताइए और बताइए कैसे
1: एक लाभ तो क्या है कि जो मोटर कार अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अब एक चीज़ कई लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो वो अलाउ नहीं होता है, लेकिन आजकल आपको मालूम है कि कई लोगों को कई जगह जाना होता है ऑन द वे, तो वो आप पोर्शन नोट कर लो, 88 सेंट पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलता है, तो अप टू 5,000 किलोमीटर आप क्लेम कर सकते हो, तो आप करीब $4,400 ये बनता है कि अगर आपने प्रॉपरली अपने लॉग बुक मेथड बोलते हैं उसको, आप उसको लिख लो, तो 88 सेंट पर किलोमीटर के हिसाब से उसका होता है, तो वो भी एक अच्छी होता है। जैसे डॉक्टर हैं, आपने सर्जरी में गए, यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर ऐसे करे, डॉक्टरों को तो खैर बहुत वैसे भी होता है, लेकिन और भी कोई हो सकता है, और आजकल लोग घर से भी काम करते हैं शैलजा जी, तो 70 सेंट पर किलोमीटर होता है, सॉरी 70 सेंट पर आवर के हिसाब से होता है आपको उसमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, इंटरनेट का खर्चा हुआ, फ़ोन का खर्चा हुआ, स्टेशनरी कंज्यूमेबल, आपने चाय कॉफ़ी पी घर में, तो उस सबका जो उन्होंने एक गवर्नमेंट ने बनाया है पैसा है, उसका 70 सेंट पर आवर के हिसाब से होता है, तो उसको आपको अगेन एक लॉग बुक बनानी होती है कि कितने दिन आपने कितने घंटे काम करा, उसका बनाइए, फिर उसके हिसाब से आपको क्लेम।
0: आजकल तो घर से काफ़ी काम हो रहा है
1: जी। नहीं नहीं काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा हाई एंड का टिप है इसमें, डोंट गेट टू ग्रीडी। अगर आप ऐसे बोलो कि मैं एक कमरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरा खर्चा है, ट्राई टू क्लेम मोर, जब आप उस घर को बेचोगे ना तो उस कमरे के बराबर का जो एरिया होगा ना प्रोपोर्शनल रोज को बोलते हैं उसको, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में नहीं आएगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: मालूम से
0: कॉम्प्लिकेशन। ये बड़े अच्छा आपने बताया कि इस तरह से ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको
1: बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत महंगा मतलब बहुत महंगा, समझो कि 20% है। आपने $1 million एक प्रॉफिट बनाया अपने घर पे, तो उसका 20% पे टैक्स देना पड़ जाएगा।
0: अच्छा, इस पर एक एक सवाल मेरा ये है
1: जी
0: कि मान लीजिए आपने घर खरीदा 15 साल पहले
1: जी,
0: और आपकी उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी,
1: ठीक है,
0: नहीं बढ़ी, लेकिन तो उसके इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी करंट वैल्यू काउंट की जाएगी या जो खरीदा था वो वैल्यू काउंट की जाएगी?
1: ओके, एक सिंपल एग्जांपल से बात कर लेते हैं,
0: ठीक है,
1: कि आज अगर आपने घर बेचा, $1 million का लिया था और समझो $2 million हो गया, फॉर द सेक
0: ओके, ठीक है, ठीक,
1: तो $1 million आपका जो प्रॉफिट हुआ है, जो कैपिटल गेन उसको बोलते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं भरा जाता है क्योंकि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है।
0: लेकिन जो $1 million की प्रॉपर्टी थी, अगर उसे इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो $1 million, $2 million ऑलरेडी हो गया।
1: मेरी बात तो सुनिए, अभी जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का ये
0: ठीक,
1: हो गया,
0: ठीक।
1: अगर आपने ये रेंटल प्रॉपर्टी ली,
0: ओके,
1: तो $1 million का अब आपका इसमें कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, फिर उसमें 50% डिस्काउंट मिलता है, $1 million अब 5 लाख रह गया, ठीक है, तो वो ये मान के चलते हैं जैसे आपने इन्फ्लेशन बोला है, उन्होंने मान के चला कि भाई ये इन्फ्लेशन वगैरह,
0: आप तो रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं इस बारे में,
1: अभी नहीं हुए हैं, इस साल तक की मैं अभी बात कर रहा हूँ,
0: नहीं तो अगले साल की बात,
1: अगले साल में क्या होगा कि ये एक काम करते हैं क्योंकि टॉपिक का मैं अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ, पहले इस साल का हम हैंडल कर लेते हैं, फिर अगले साल का फिर हम बताते हैं,
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है।
1: तो बस एक ही मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में अगर आप एक प्रोपोर्शन क्लेम करना चाहते हो, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, आप अपने टैक्स अकाउंटेंट से बात भी कर सकते हैं क्योंकि वो फिर पोर्शन आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस में नहीं गिना जाएगा,
0: ठीक है,
1: एंड देन यू एंड अप पेइंग कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन योर ओन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बहुत ही डिसएडवांटेज होता है।
0: अच्छा, इसी बारे में मैंने एक और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में पता किया था, अगर आप उस घर में 2 साल तक नहीं रहते हैं और कोई नहीं रहते हैं, आप किराए पर भी नहीं उठाया आपने, तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं रहेगा, ये मैंने कहीं
1: नहीं, आप ढंग से पढ़ा करिए।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास में 2 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आ सकती है।
0: अच्छा,
1: अगर एक ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जैसे आपका कभी कभी ऐसे होता है ट्रांसफर हो जाता है, आप मेलबर्न चले गए,
0: ठीक,
1: और यू डोंट वांट टू गेट योर हाउस रैक, आपने बंद किया, सामान पड़ा है, कहाँ लेके जाओगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उस केस में नहीं आपका चलेगा, बिकॉज आपका एक ही घर है। तो होप दिस इज वेरी क्लियर।
0: अच्छा चलिए, ठीक है।
1: और एक्चुअली एक और है, अगर आपको थोड़ा और टेक्निकली समझ, आपके पास में ऑप्शन होता है 6 महीने तक 2 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो सकते हैं, क्योंकि भी आप मूव करते हो एक दूसरा का, तो ये भी आप एडवांटेज ले सकते हो, फिर प्ले दिस गेम। तो होम ऑफिस का ये हो गया क्लियर कि कभी आप प्रोपोर्शन में नहीं जाइएगा, आप जितना ये यूज करा केवल उसी में रहिए
2: जी।
1: हाँ, रेंटल वाला अलग के साथ होता, अगर रेंटल पे आपने घर लिया है उसका कोई कैपिटल गेन का चक्कर नहीं होता, तो उसमें आप परसेंटेज कर सकते हो।
0: अच्छा, उसका जवाब मुझे क्लियर नहीं हुआ,
1: हाँ बताइए,
0: कि अगर मान लीजिए कि अगले साल की बात करें कि नहीं करें
1: अगले साल के, रुक जाइए एक सेकंड,
0: अच्छा,
1: वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे,
0: ठीक है, ठीक,
1: मुझे मालूम था कि ये आप करोगे,
0: अच्छा ठीक है,
1: क्योंकि
0: चलिए।
1: अच्छा, अब लॉन्ड्री का भी खर्चा होता है, जो प्रोटेक्टिव क्लोथ जैसे होते हैं या जिसपे लोगो लगा होता है, यूनिफॉर्म जैसे होता है ना कि उसमें, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, तो $1 per load होता है, केवल वही आपके कपड़े, और या 50 सेंट अगर मिक्स आपका लोड है, और $150 तक आपको कोई रसीद की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप $300 तक केवल क्लेम करते हो तो कोई रसीद का झंझट नहीं, बाद में मैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर दूँ, अगले साल से $1,000 वाला शुरू हो रहा है, जिसने भी पढ़ा है ना कि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू हो गया है $1,000 तक, तो वो अगले साल से June 27 से।
0: स्टैंडर्ड डिडक्शन से क्या मतलब आपका?
1: $1,000 तक प्रदीप जी आप क्लेम कर सकते हो, $1,000 तक।
0: किस किस के लिए? और ये बिना रिसीट के कर सकते हैं?
1: कोई रसीद की कुछ भी जरूरत नहीं।
0: अच्छा, तो $1,000 तक आप बिना रसीद के क्लेम कर सकते हैं।
1: जैसे अभी $300 है, आप अगले साल में $1,000 वो हो जाएगा। अच्छा, गुड न्यूज। अभी इतने लोग परेशान होते हैं छोटा छोटा रसीद करने, अभी $1,000 कर दिया।
0: अच्छा ठीक है,
1: तो दिस इज वेरी गुड न्यूज।
0: $1,000 पर आइटम
1: जी आपको मालूम नहीं, आप कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हो, ये यहाँ पे जो है ना कुछ दो दो क्लास होते हैं, एक पैदा करता है एक ऊपर, तो जो जिसके लिए खर्चा करना है उसके लिए आपको पैदा करना पड़ेगा।
0: ठीक है,
1: तो आप एक खर्चा वर्चा ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपका $300 तक है तो आपको आप अकाउंटेंट आपका सिंपली डाल देगा उसमें, हो जाएगा।
0: ठीक है,
1: ठीक है। तो अभी 50% कैपिटल गेन डिस्काउंट है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट अगर आपको कुछ बेचना है। जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक और चीज़ है कि कई लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियां होती हैं, तो आप अपना जो इंटरेस्ट है एडवांस में भी पे कर सकते हो।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो जैसे आपने इस साल का पे करते रहे करते रहे करते रहे, और जून में आके आप अगले साल का पे कर दो, तो इस साल आप उसका क्लेम कर सकते हो।
0: अच्छा अच्छा ठीक।
1: तो इट्स गुड टैक्स प्लानिंग अगर आपको आपके पास में पैसा है, यू वांट टू टेक इट, क्योंकि डॉलर वैल्यू टुडे इज बेटर देन डॉलर वैल्यू टुमारो, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं वो आप प्लान कर सकते हो। तो जिनका फैमिली ट्रस्ट है, एक मैं लॉ बता रहा हूँ आपको, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 30 जून के पहले करना पड़ता है। अब आप कहेंगे अभी तक तो बुक्स ही नहीं बनी है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उसका एक तरीका होता है, आपका अकाउंटेंट बताएगा आपको कि इसका रेजिडुअल मेथड बोलते हैं, कि जहाँ पे तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट तो है ही, मान लो $500,000 का प्रॉफिट है, तो आपने कहा भाई पहला 1,00,000 जाएगा वाइफ को, दूसरा 1,00,000 जाएगा हस्बैंड को, और 3,00,000 जाएगा कंपनी को। इस तरीके से आप जो बैलेंसिंग फिगर उसको बोलते हैं रेजिडुअल, उसमें जाएगा।
0: अच्छा, तो इतिंदर जी एक सवाल आया, ऋषा जी पूछते हैं कि डेडलाइन टू डिपॉजिट मनी टू सुपर वाज 26/6, इज इट टू लेट टू डिपॉजिट नाउ?
1: हाँ, आप सीधा डालिए उसको। और तो मैं दो किस्म के हैं, एम्प्लॉयर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सिस्टम के थ्रू जाता है, आप अपना वाला जो पैसा है सीधा डाल सकते हो।
0: तो अभी है 2 दिन?
1: हाँ, अभी 2 दिन, अगर आज ही आप डाल दो और कल सवेरे इंटीमेट करना बहुत जरूरी कि दिस इज माय इंटेंशन टू क्लेम एज ए डिडक्शन।
0: अच्छा,
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: आगे बताएं।
2: दूसरा प्रश्न है, डेडलाइन टू डिपॉजिट मनी टू सुपर वाज 26/6, इज इट टू लेट टू डिपॉजिट?
1: हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बात आपकी सही है कि जो तो उसका क्लियरिंग हाउस होता है, तो वो क्लीनिंग हाउस में जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसका सीधे डाल रहे हो तो डाल सकते हो।
0: ठीक है,
1: ठीक है ना। खासतौर पर SMS है जिनका, वो आप ही के अकाउंट है, एक मिनट में चला गया पैसा।
0: अच्छा, आगे।
1: ठीक है, अब मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में बता दूँ, जो बिजनेस के क्लाइंट है।
0: बिल्कुल,
1: ठीक। आई नो कि आप अगर आप ब्रेक लेना चाहो तो बेशक ब्रेक ले लो।
0: हम ऐसा करते हैं, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि हमारे जो मेहमान सामने बैठे हुए हैं, हाँ, हम उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ, शायद शायद उनके पास भी कुछ सवाल हो आपके लिए, क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं। और
1: ऐसा ना बोलो भाई, वरिष्ठ अभी यंग है।
0: नहीं, वरिष्ठ ये बात, वरिष्ठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी इनकी जो पहुँच है बहुत गहराई तक है और बहुत ऊँचाई तक है।
1: हाँ,
0: ये हमारे
1: उम्र से कोई लेना देना?
0: उम्र से कोई नहीं, हाँ, उम्र से कोई नहीं होता, यंग एट हार्ट तो कभी भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तो संजय अग्निहोत्री जी हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं, ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि शायद ये जो पब्लिश करते हैं इससे रिलेटेड या इनकी और जो हॉबीज़ हैं उनसे रिलेटेड शायद कुछ पूछना चाहेंगे यतीन्द्र जी से, तो हमने सोचा कि आपको उनसे ही मिलवा देते हैं। तो संजय जी, वैसे तो आपको हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बुक्स के बारे में तो थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी यतीन्द्र जी हैं तो उनसे आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं जब भी आप।
2: लेकिन इतने गूढ़ विषय के विषय में बात करने से पहले एक कम से कम गीत तो सुना दीजिए।
3: एक मिनट, मैं जरा सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और प्रदीप जी आपको, यतीन्द्र जी आपको, और शैलजा जी दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और इसी के साथ मैं आगे हम काफ़ी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
0: शैलजा जी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, कि शैलजा जी ने कहा कि एक गीत तो सुना दीजिए, तो मैंने सोचा यस, हम तो ऐसे बह गए थे यतीन्द्र जी के साथ पैसे के मामले में,
3: पैसे का मामला ही ऐसा
0: गीत तो भूल गए थे, लेकिन इसी
3: 99 का फेर ही ऐसा
0: है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाते हैं लता और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म 1970 की है शोर, और बड़ा सुंदर गीत है, आपने बहुत बार सुना भी होगा,
1: बहुत अच्छा,
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता है उसे सुनकर।
2: नितिन जी ने गेस कर दिया है,
0: उसमें जिंदगी का फलसफा भी है।

0: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक.
2: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
3: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. तो यतीन्द्र जी, और इम्पोर्टेंट बात,
4: जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है.
3: ठीक है, बताइए.
4: तो बिजनेस में क्या है कि अगर आप एक्सपेंसेस अभी ले आओ जून में और इनकम को जुलाई में ट्रांसफर कर लो. तो जैसे किसी को आपको इन्वॉइस रेज करना है तो 1 जुलाई को कर लो. लेकिन अगर मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है अभी खरीद डालो. कंप्यूटर लेना है अभी ले लो. $20,000 तक इमीडिएट डिडक्शन मिलता है.
3: अच्छा.
4: अब जैसे कोई चीज आपको खरीदनी ही है तो क्यों 2 दिन बाद करो, तो आपको अभी फायदा मिल गया उसका.
3: अच्छा, ठीक है.
4: ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती होती है सुपर एम्प्लॉय का सुपर पे करना. अगर आपने अगले साल में पे करा तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता. बेकार हो गया. अब GST के रिकंसलेशन वगैरह होते हैं वो आप अकाउंटेंट कर लेगा, उसका इतना बड़ा नहीं है. लेकिन जो $20,000 वाला है वो जरूर करना चाहिए मेरे ख्याल से. और जो एक एक ना बैड डेट किस्म की चीज़ होती है कि आपने किसी को करा उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको राइट अप करना होगा. उसको अगर आप राइट अप अगले साल में करोगे तो कोई फायदा नहीं. होता है बिजनेस में राइट अप भी होते हैं, तो वो आपको करना होगा. तो अगर कर लिया तो अच्छा है. कई चीज़ें आप एडवांस में पे कर सकते हो, इंश्योरेंस पे कर सकते हो, इंटरेस्ट इसमें भी आप मान लो कोई फिक्स लोन का वो भी पे कर सकते हो. कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराने हैं, मार्केटिंग के जो भी आप जो भी खर्चे आप इस साल में लेके आ सकते हो वो ले लो. अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो आप उनकी इनवॉइस ले लो. अगर आप एक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग करते हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो क्योंकि वो खर्चा इनकर्ड हो गया.
3: ठीक
4: ठीक है. और मोटर व्हीकल का तो जैसे है कि लॉग बुक मेथड पे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. एक FBT का भी कैलकुलेशन होता है, वो भी अगर आप ध्यान में रखते हो आप अपने अकाउंटेंट से बात कर सकते हो कि FBT को कैसे मैनेज करा जाए. जो भी आपने अपने ऊपर खर्चा करा है तो वो कर सकते हैं. ट्रेडिंग स्टॉक एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखना, जो चीज़ें राइट अप खराब हो गई हैं तो उसको आप अपने ट्रेडिंग स्टॉक से निकाल सकते हो. ठीक है. ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी बोला ही था आपको. एक चीज़ याद रखिएगा, आपको 5 साल तक रिकॉर्ड रखने होते हैं. तो आपका कभी भी कॉल आ सकता है एंड यू हैव टू हैव रिकॉर्ड. अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है. तो चेकलिस्ट में वही बोलता हूँ कि इनकम एक्सपेंस को अपना रिव्यू कर लीजिए. पेरोल आपका रिकंसाइल होना चाहिए. सुपरनेशन का मैंने बोला है. एंड या यही है वैसे तो. क्या है कि दिस इज
3: यतीन्द्र जी, आप यहाँ आए, आपने इतनी सारी बातें बताई हमारे श्रोताओं को, लेकिन ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं पैसे के बारे में, है ना
4: जी. जी
3: तो ऐसा है कि हम आप फिर अगले प्रोग्राम में आपसे और बात होगी.
4: अगले वाले में हम ऐसे कर लेंगे प्रदीप जी, अगर आप हमें बुलाते हैं तो जो बजट में चेंजेज हुए हैं बहुत सीरियस हुए हैं उसमें अच्छा खासा आप मुझे समय दीजिएगा.
3: ठीक,
4: और फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं.
3: ठीक है, उसके बारे में बात होगी. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई,
4: मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है.
3: और आप हमारे साथ बने रहिए चाहे तो जी. और हालांकि आप बहुत बिजी आदमी हैं हमें पता है, आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं. लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने संजय जी पर. संजय जी से आपको मिला तो चुके ही हैं. संजय जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए और उसको मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए. ये बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत इनका ज्ञान बहुत गहरा है, हर बारे में, हर तरह के बारे में. आप जब इनके उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका ज्ञान कितना गहरा है. तो संजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है.
5: संजय जी, जरा आप अपना थोड़ा परिचय बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन यहाँ रहे हैं. मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे तो आप पूरे गुरु घंटाल लगते हैं. न जाने आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपकी किताबों से जो लगता है वो तो बिल्कुल अलग लगता है. तो आप ये बताइए, आपका परिचय क्या है, असलियत क्या है?
6: ये असलियत ये है कि मैं जब आया था, मैं आया हूँ रायबरेली से, रायबरेली का रहने वाला हूँ. और मैं जब आया था तो मैकेनिकल इंजीनियर था.
5: लगता नहीं आपकी किताबों से कि आप इंजीनियर हैं.
6: और आपने अगर M5 देखा है, M5 पे जो 3 लेन का 4 लेन कर देते हैं सुबह को 4 बजे के करीब, और उसके बाद 8 बजे फिर बदल देते हैं उसको 4 लेन का, फिर 3 लेन कर देते हैं, वो जो बीच में एक बैरियर है, उस बैरियर को मूव करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेलर है, आता है जो कि ट्रक पे पीछे लगा होता है, वो मेरा डिजाइन किया हुआ है.
5: अच्छा, वाह, तो हाँ, तो बड़े गर्व की बात है. हाँ,
6: तो मैं ये RTF फ्लैट्स फ्लीट सर्विसेज में इंजीनियर था उस समय, तो वो मैंने डिजाइन किया. तो मैं वही था, और लेकिन मैं बचपन से लिखता हूँ, मेरी लिखने की आदत है. 5वें में पढ़ता था तब से लिखता हूँ. और पता नहीं मैंने यहाँ बताया है कि नहीं, कि वो उस समय कादंबरी में एक वो छपता था, पिछले लास्ट के पन्ने में एक होता था कि नए लेखकों को वो मौका देते थे. तो
5: मुझे याद है,
6: तो हमने, हमको घर से उस समय, मैं बिजनेस मैन फैमिली से हूँ, मेरी फादर के अलावा बाकी सब लोग बिजनेस करते हैं. तो मुझे 25 पैसे उस जमाने में मिलते थे शाम को. कि हर बच्चे को बिजनेस फैमिली देती हैं पॉकेट मनी देती हैं. तो वो उन्हीं से मैंने अब टिकट विकेट खरीद लाए हम अपना, और हमने जो है 5 कविताएं लिख के, और वो जो है लिफाफे में डाल के, और टिकट लगा, पता लिखा, लिफाफा भी साथ में रिटर्न के लिए कि अगर नहीं मालूम. और मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी मेरी. तो वो मैंने किसी तरह से कोशिश की कि जितना अच्छा लिख सकूँ. वो लिख लिखा के, और उसमें आत्मकथ्य और ये, और वो आत्मकथ्य भी लिखना होता था. वो सब लिख के और वो भेजा, और वो साहब फटाफट वापस आ गया, क्योंकि इतनी गंदी राइटिंग कौन पढ़ेगा. तो वो तुरंत ही वापस आ गया. वापस आया तो वो हमारे परिवार के हाथ लग गया. चाचा वाचा लोग थे और सब लोग थे, उनके हाथ लग गया. उन्होंने जो है मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कह रहे देखो ये तो अभी पैदा हुए नहीं ठीक से. और ये देखो ये लेखक हो गए, कविताएं लिखते
5: हैं.
6: हाँ, बड़ा मजाक उड़ा.
7: आपने वहाँ तो आपकी कविता छपी नहीं, लेकिन आज हम आपको मौका देते हैं कि वो कविता अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो तो जरा सुनाइए.
6: जी, वो कविताएं तो मुझे बहुत कम याद है. वो है, एक तो छात्र पे थी कि आज का छात्र झिड़क का नहीं उसका कहेगा पात्र. वो तो भूल गया हूँ मैं, वो सब मैं बाद में दूसरी सुना दूंगा.
7: कितने बड़े थे जब आपने ये कविता लिखी?
6: मैं 5वीं में पढ़ता था, बताता
5: हूँ. 5वीं पढ़ा, इसका मतलब आप करीब 10 साल के होंगे.
7: 10 साल के होंगे.
6: हाँ, तो वो एकदम ठीक से याद नहीं है. हालांकि वो कविताएं बाद में यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैगजीन है गर्भनाल, उसमें छपी थी. और उसके बाद मुझे भोपाल बुलाया गया, तब वो भोपाल में विश्वरंग के प्रोग्राम में उनके टिकट विकेट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे टिकट दिया था.
5: यानी अंकुर आपका जम गया था तभी, 5 साल. हाँ, 9-10 साल की उम्र में आपका अंकुर जम गया.
6: जी बिल्कुल.
5: और भी जो पौधा है वो अब हो रहा है.
6: हाँ, फिर उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग में गया तो वहाँ भी मैं लिखता था लोकल मैगजीन के लिए, और कॉलेज की मैगजीन में भी छपता था. तो वो सब होता रहा है. लेकिन उस बीच क्या हुआ कि इंजीनियरिंग में मेरा रिजल्ट थोड़ा खराब होने लगा था. कितना खराब क्यों मैं बता नहीं सकता हूँ. तो उसके बाद वो हमारे लाइब्रेरियन थे.
7: आप एक बात बताइए कि खराब किस सब्जेक्ट में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है.
6: जी वही तो सबसे मुश्किल बात है, अंग्रेजी में.
7: हाँ नहीं, मुश्किल बात नहीं है. अक्सर होता ये है कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन्हें बड़ी मुश्किल होती है पहले साल में. तो मुश्किल होती है. और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होता है, ह्यूमैनिटीज नाम से एक सब्जेक्ट होता है, पास करना होता है. तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर तो अच्छे हैं. आपने यहाँ डिजाइन करके आपने बताया. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप बताएं कि आपका किस सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे
6: जी वो अंग्रेजी में बता अंग्रेजी में अच्छा मैं ही नहीं जो मेरे क्लास में सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला स्टूडेंट था वो उसके भी फर्स्ट टर्मिनल में जो है वो मुझसे भी एक नंबर कमाया था
5: अंग्रेजी में सब नीचे
6: थे मामले तो ये होता है
7: चलिए ऐसा है कि थोड़ा सा आगे चलते हैं आप ने अभी जो लेटेस्ट आपकी बुक है कारसाज मैंने सोचा कारसाज मैंने कभी सुना तो नहीं इस शब्द को तो ये कारसाज कहाँ से आया लेकिन जब मैंने आपकी किताब पढ़ी तो मेरी समझ में आ गया कारसाज से क्या मतलब है थोड़ा सा बताइए इसके बारे में
6: देखिए कुछ आपने हर दफ्तर में देखा होगा हर महकमे में हर यहाँ तक कि प्राइवेट बिजनेस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ काम करते हैं उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि उनको उसके बदले में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और या क्या हो रहा है और वो इतने स्ट्रांग भी होते हैं कि आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं एक खास कम्युनिटी है जैसे कि इवन इंडिया में जो जो आईएएस लॉबी है उसमें भी कुछ करीब 15 या शायद 16 या 15 लोग हैं मैंने गिनती की है वो ऐसे हैं कि वो लगातार काम करते हैं और सारी सरकारें उनसे तिलमिलाती रहती हैं उनका ट्रांसफर करती रहती हैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती कभी कुछ क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि बचना कैसे है तो वो जो कम्युनिटी है उनके लिए मैंने नाम दिया है कारसाज कारसाज का मतलब होता है जो चुपचाप काम करता हो भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है खुदा के लिए गॉड के लिए भी इस्तेमाल होता है कारसाज तो वो काम करने वाले लोग हैं ऐसे लोग हैं जैसे कि आप याद करिए एक आईपीएस थे अरुण कुमार उन्होंने कितने कितने कमाल के काम किए वो तलवार मर्डर केस वाले
5: बिल्कुल और क्या
6: और लेकिन उनको कोई कुछ कभी बिगाड़ भी नहीं पाया वो चुपचाप रिटायर हो गए और बिहाइंड द स्क्रीन चले गए और अब आप मतलब इतने साइलेंटली काम करने वाले आदमी थे कि उन्होंने कभी सामने ही नहीं आए और अभी भी आप उनसे बात करना चाहो तो ज्यादा बात नहीं करते
5: देख लीजिए जो जुलाहे होते हैं कितनी खूबसूरत बनारसी साड़ियां बनाते
6: बिल्कुल,
5: हैं लेकिन चुपचाप पीछे रहते हैं कभी वो आगे नहीं आते
6: हाथ नहीं आते
5: तो ये बताइए संजय जी आपने कितनी किताबें लिखी हैं आप तो जीवन भर कविताएं और लेख लिखते रहे हैं लेकिन आपने पुस्तकें कितनी प्रकाशित की हैं
6: जी प्रकाशित तो 12 पुस्तकें हुई हैं मेरी
5: 12 एक दर्जन
6: हाँ 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसमें कि 7 उपन्यास हैं एक व्यंग संग्रह है और एक कविताओं का संग्रह है और एक जो है वो कहानियों का है
5: अच्छा,
6: तो इतनी किताबें हैं अभी
5: मैंने आपकी किताब पढ़ी है कारसाज तो मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूँगी कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्रभावित हुई थी कि मैंने आपकी काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं
6: आपने तो बहुत पढ़ी
5: सभी
6: ऑलमोस्ट सभी पढ़ी हैं
5: सभी लगभग सभी पढ़ी हैं लेकिन जो कारसाज है वो तो मैंने खूब तबीयत से पढ़ी है और मुझको बहुत ही अच्छी लगी वो किताब क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सामाजिक जागरूकता का एक और पठनीय उदाहरण है ये उपन्यास और उपन्यासों की तरह से मुझे ये लगा कि प्रशासनिक नियमों का वो सेवाओं का इतना आपको ज्ञान है वन विभाग का आपको इतना ज्ञान है पेड़ को काटने की बारियों का आपका इतना ज्ञान है वन विभाग अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की मनोवृत्ति का आपको साइकोलॉजी जो है उसका आपको ज्ञान है इन्हीं आप तो बिल्कुल ही हमें लगता है गुरु घंटाल हैं
6: जी बहुत धन्यवाद
5: गुप्तचरों की कार्य प्रणाली व क्षमता उनका आपको है पूरा ज्ञान
6: मैं लेखक के रूप में अपना नाम बदल कर गुरु घंटाल ही कर लूं मैं सोच रहा हूं
5: कानून में मुझे लगा आप शायद लॉयर होंगे फिर ये नहीं मुझे लगा कि आप इंजीनियर आपका माइंड जो है वह इंजीनियरिंग का है लेकिन इन सब चीज़ों से आपको ये ज्ञान कहाँ से इतना हुआ है
6: देखिए लॉयर का जहाँ तक सवाल है मेरे पिताजी लॉयर थे और वो घर में बातचीत इस तरह की करते रहते थे कि कभी जैसे मान लो मजाक किया कोई किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया घर में माँ ने या किसी भाई ने तो बोलने लगते थे कि वो अंडर सेक्शन दिस एंड दिस तुमको जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है तो वो मजाक में ही होता था लेकिन वो इम्पैक्ट रखता है थोड़ा सा तो
7: अच्छा तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं एक गीत और सुन लेते हैं
6: जरूर
7: क्यों एक घंटे में हम एक ही गीत सुना पाए तो हमारे कुछ श्रोता लोग
5: बिल्कुल
7: कहेंगे कि आपने नीरस कर दिया लेकिन ये है कि नीरस बात नहीं हो रही काम की बात हो रही है संजय जी से तो 1970 में एक बहुत हिट फिल्म आई थी नाम था बॉबी बॉबी के पीछे जो लोग
6: दीवाने थे,
7: दीवाने थे यंग लोग, दीवाने हो गए थे। अब पता नहीं कितनी बार उन्होंने वो फिल्म देखी थी। तो उसी फिल्म का एक गीत सुनाते हैं।
5: प्रदीप जी आप अपनी दीवानगी की बात कर रहे हैं क्या कि जनरल दीवानगी की बात कर रहे हैं?
7: मैं भी
6: तो ये गाना लिखा हुआ, गाया किसने वैसे?
7: गाया आपको पता लग जाएगा।
6: अच्छा जी, शैलन सिंह वाला है क्या?
7: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: मैं शायर तो नहीं?
7: बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे गीत में।
6: मैं शायर तो नहीं।
5: जब तक
7: संजय जी आप गाते अच्छा है, लेकिन हमें
6: आपने कहा गड़बड़ी हो रही, तो मैंने कहा मैं शुरू कर देता हूँ।
7: किसी वजह से गीत नहीं चल पा रहा है, तो हम
5: तो जब तक आप गाना
7: हम एक राजेश खन्ना गीत,
5: जब तक गाना आपका लग रहा है तब तक मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं आपके इस उपन्यास कारसाज से तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपका ज्वलंत विषय लेखन शैली और सामाजिक विषमताओं को उजागर करने की कला आप में बहुत है। इसके पहले भी आपने जो कई सारे लिखे हैं उपन्यास, उन सब में भी लगता है कि सामाजिक जागरूकता के प्रति आप कितने अलर्ट हैं।
6: मेरा मुख्य विषय वही रहता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप, मुझे लगता है 12 किताबें लिखने के बाद में आप विश्व स्तर के लेखक बन रहे हैं।
6: जी बहुत शुक्रिया।
7: बिल्कुल बिल्कुल
6: बहुत शुक्रिया।
7: तो इसी के साथ शैलजा जी, किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग का।
5: अरे वाह
6: वाह, कटी पतंग क्या बात है।
5: ये तो 70

0: जीनी मकार्थर की साल के अंत की डेमो क्लियरेंस सेल अब शुरू हो गई है। इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए 3 साल की मुफ्त सर्विसिंग, $2,000 का शानदार ट्रेड इन बोनस, साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त। जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI। ऑफर 30 जून तक ही मान्य है, आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए। नियम एवं शर्तें लागू। MD 5411।
1: 2OOO's station sponsor.
2: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Durban Radio.
3: So, Shailja ji, संजय जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं और आपका कहना ये है कि इनकी जो किताबें हैं उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। ऐसा लगता है कि कभी ये लगता है कि ये वकील हैं, कभी ये लगता है कि ये
4: IAS ऑफिसर हैं,
3: IAS ऑफिसर हैं,
4: फॉरेस्ट रेंजर हैं,
3: हाँ, या मतलब सिर्फ राइटर ही हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर तो इनके पास क्वालिफिकेशन है, इनके पास सर्टिफिकेट है, इसके अलावा इन्होंने अच्छा काम भी किया है। मैकेनिकल इंजीनियर थे तो इन्होंने बड़ी अच्छा
4: M5 में आपका नाम दर्ज है। और मुझे तो ये लगता है कि हम जैसे साधारण प्रशंसकों से अलग प्रशासनिक प्रशिक्षण व सेवारत अधिकारियों को जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग होती है, उन लोगों को आपकी किताब पढ़नी चाहिए।
3: और देखने में ऐसा लगता है कि अगर ये अपना जो हल्का हल्का सफेदी आ गई है इनकी मूंछों पर, अगर इसे भी काला करना, तो लगता है 25 साल का लड़का कहाँ से आ गया।
5: जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, दरअसल इस सारा जो है, जो कुछ भी आप देखते हो मैं लिखता हूँ, इसमें मेन ये है कि अधिकतर समय मैं अध्ययन ही करता हूँ, चाहे वो गूगल से हो या किताबें खरीद के हो। अब तो उतना नहीं खरीदता मैं, लेकिन अभी तक ये था कि मैं हर साल जब इंडिया आता था तो करीब 20 किलो का पैकेट एक मेरा वहाँ से पोस्ट करता था, मैं यहाँ आता था। तो अभी तो मेरे अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया हो गया है, यहीं पे मिल जाती किताबें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लिख दे तो वो यहीं भेज देता है, बहुत और टाइम से दूसरे तीसरे दिन आ जाती है।
3: अच्छा, तो आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं?
5: पढ़ते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया पढ़ना, उसकी पढ़ते हैं, मैं केवल मैटर पढ़ता हूँ, जैसे कि अब टैक्स के ऊपर है तो, या अभी जैसे आपने देखा कि जैसे कि दीदी ने बताया कि इसके बारे में है, IAS IPS के बारे में, तो उनका वो सारा पढ़ना, लॉ के बारे में पढ़ना, और जो बीच में मैंने जैसे इस किताब में लिखा है कि जो वन विभाग में जो चोरियाँ हुई लकड़ी की, तो वो कौन कौन सी लकड़ी होती, क्या होती, वो सारा स्टडी करना, तो वो उसी में टाइम ज्यादा लगाता हूँ।
4: लेकिन किताब लिखने के लिए आपको रिसर्च काफी करनी पड़ती
5: है, बहुत ज्यादा,
4: बहुत कि इसमें आप जितने भी लिख रहे हैं वो फैक्चुअल चीजें हैं और आप अपने आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं। ये बताइए संजय जी, अब आपकी अगली किताब कौन सी है, 13वीं?
5: ये बड़ा मुश्किल है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे साथ इतना मतलब सुपरस्टिशन है थोड़ा सा। मेरी एक किताब थी जो आप, दूसरी किताब आपने पढ़ी है, झूठे नाते करके, झूठे नाते के टाइम पे हुआ कि ये कि वो किताब जो है एक बहुत बड़े पब्लिशर, उस जमाने में नया मतलब था पब्लिशिंग में, तो बहुत बड़े पब्लिशर ने वो मुझसे ले ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाकायदे, और जगन्नाथ करके पब्लिशर था हिंदी में, और उन्होंने मुझसे ले ली थी, और वो तो हमने जाके चौड़े हो गए अपने, जाके हमने दूसरे पब्लिशर को जो है हमें गा दिया, हमने कहा कि देखो अब हमको हल्के मत लेना, अब मैं बहुत बड़ा वो हो गया हूँ। अब उसमें हुआ क्या कि वो, और मैंने सब जगह गा दिया कि साहब ये है, देखिए मैं तो इनके साथ पब्लिश हो रहा हूँ, तुम लोग कोई चीज़ नहीं हो। तो उस हिसाब से हुआ क्या कि फिर कुछ ऐसी नज़र लगी कि जो लेडी थी रेनू अगाल करके थी, बहुत फेमस थी, उसकी द प्रिंट में बाद में काम करती थी वो, तो उन्होंने एक तो नौकरी छोड़ दी पहले, वो प्रिंट में चली गई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई।
3: अच्छा।
5: और फिर वो हिंदी विभाग ही बंद हो गया उस पूरे पब्लिशर का।
3: अच्छा।
5: तो हमने कहा भाई इससे अच्छा है किसी को कुछ बताना ही नहीं है। तो मैं कई किताबें एक साथ भी लिखता रहता हूँ, तो इसलिए उसका कोई वो नहीं है, जब आएगी किताब तो आपको पता चल जाएगा।
4: तो ये आप सीक्रेट रखेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी
5: ये थोड़ा सा है, मैं सुपरस्टिशियस हूँ थोड़ा सा।
3: नहीं, एक्चुअली जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सुपरस्टिशन शायद बढ़ जाता है।
5: हाँ बिल्कुल।
3: क्योंकि मैंने एक्चुअली अपने जीवन में भी कुछ ऐसा देखा है कभी कभी कि सुपरस्टिशन हो जाता है, क्योंकि आपके साथ अगर उसी तरह की घटना बार बार होती है तो आपकी समझ में आता है कि हाँ कुछ तो है। तो संजय जी, अभी तो आपसे काफी बात हो चुकी है, हम एक गीत सुनाएंगे अच्छा सा, और उसके बाद दुर्गा शक्ति पर भी आ जाएंगे और आपकी किताब के बारे में और दुर्गा शक्ति के बारे में बात करेंगे, और शैलजा जी की नई बहुत सारी किताबें लिखी।
5: हाँ बहुत।
3: शैलजा जी की किताबों के बारे में भी बात करेंगे, दुर्गा शक्ति की भी बात करेंगे। तो क्योंकि समय सरकता जा रहा है तो एक गीत और हो जाए।
4: यस। तो ये बताइए प्रदीप जी, क्योंकि परसों है सोशल मीडिया का इंटरनेशनल डे।
3: हाँ हाँ।
4: तो और आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा हर व्यक्ति के जीवन का ये अभिन्न भाग है, तो थोड़ा सा इसमें हम चाहेंगे, और संजय जी ने इस पे भी कुछ लिख रखा है
5: जी।
4: तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत हम इस पे भी बात करें। और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है, ये लोगों के मानवीय मूल्यों की मजबूती के आधार पर जोड़ता है, पहचान के आधार पर नहीं। तो सोशल मीडिया की इतनी उपयोगिता है, सोशल मीडिया के अगेंस्ट इतना कुछ कहा जा रहा है, तो ये जरा बताइए कि आपका क्या विचार है सोशल मीडिया, फिर मैं अपने विचार बताती हूँ, फिर प्रदीप जी अपने।
3: इसके पहले एक वार्ता भेजी है हमें रंजना जी ने
4: जी,
3: उस वार्ता को सुन लेते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: उसके बाद बात करेंगे।
4: हाँ।
3: और उसके थोड़ी देर के बाद एक गीत और सुना देंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: सोशल मीडिया की जो उन्होंने रंजना जी ने भेजी है, आशा है कि वो कहाँ गई, सोशल मीडिया मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, तब तक आप लोग बात करते रहिए, कहाँ गया।
5: हाँ देखिए, मैंने जो मेरा एक व्यंग संग्रह है खुरपेंच करके नाम है,
4: व्यंग खुरपेंच।
5: हाँ खुरपेंच कहते नहीं, बहुत बड़े खुरपेंची हो तुम।
4: हाँ, खुरपेंच
5: जो खुरपेंच करता रहता है। हाँ, आदमी। हाँ। तो उसमें मैंने एक व्यंग है उसी में जो छपाया, और बड़ा ये व्यंग संग्रह बड़ा फेमस हुआ था, इसका जो है बेस्ट सेलर रैंक 6 आया था कि उस टाइम पे डायमंड बुक से पब्लिश है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ये इस पर लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉनिक पे,
3: अच्छा
5: ये जो क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया को मैंने उसमें नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक नुक्कड़। आपको याद होगा कि इंडिया में नुक्कड़ होते हैं जहाँ पे पान की दुकान और एक चाय की टपरी होती है।
4: हाँ, हाँ,
5: और वहाँ लोग बैठे बकवास करते रहते हैं।
4: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
5: तो अधिकतर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल वही हो गया है, वहाँ नुक्कड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे बैठे बैठे कर।
4: बिल्कुल, कॉफी हाउस।
5: हाँ, तो उसको हमने एक और नाम दिया भी है, सिर्फ उटवल, खासतौर से व्हाट्सएप को।
3: चलिए मुझे मिल गई है रंजना जी की,
5: फिर आगे फिर बात करते हैं इसके बारे में। हाँ जरूर।
6: श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है। सोशल मीडिया डे एक कोई नया नाम नहीं है, बट इसके बारे में हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि आखिर सोशल मीडिया ने हमें क्या कुछ दिया, हमसे क्या कुछ छीन लिया, और हमें क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। जहां दुनिया मिलती है, हंसती है, सीखती है, और कभी कभी बहस भी कर लेती है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया इंसान होता तो 30 जून को शायद कहता, थैंक यू दुनिया, मैं तो बस टाइम पास के लिए आया था, तुम लोगों ने मुझे करियर, राजनीति, रिश्ते और मीम्स का केंद्र बना दिया। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं, ये तो एक वैश्विक खेल का मैदान है, जहां भारत का बच्चा रील बनाता है, ऑस्ट्रेलिया का युवक सर्फिंग की फोटो डालता है, और दोनों को लाइक करने वाला कोई तीसरा इंसान कनाडा में बैठा होता है। तो आइए इस खास दिन पर सोशल मीडिया की दुनिया के एक मजेदार सफर पर चलते हैं रंजना रमन के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजर से। भारत में सोशल मीडिया क्या है और इसका क्या अर्थ है। भारत में जहां हर कोई स्टार है, भारत में सोशल मीडिया का मतलब है ऊर्जा, उत्साह, रचनात्मकता और थोड़ी सी ड्रामा, क्वीन वाली फीलिंग। यहाँ सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक राष्ट्रीय भावना है। भारत में सोशल मीडिया की खासियत ये है कि यहाँ रील्स ऐसे बनती हैं जैसे चाय हो, हर घर में हर समय। मीम्स इतनी तेजी से वायरल होते हैं कि सरकार की नोटिफिकेशन भी पीछे रह जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हर कोई प्रोफेसर है, चाहे वो हेल्थ टिप्स हो या अर्थव्यवस्था। ट्विटर पर लोग ऐसे बहस करते हैं जैसे देश की किस्मत उसी थ्रेड में तय होनी है। लेकिन मजाक अपनी जगह, सोशल मीडिया ने भारत में असली बदलाव भी लाए हैं। भारत में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव भी देखा गया है। छोटे शहरों के क्रिएटर्स को एक नया और बड़ा मंच मिल गया है। लोकल दुकानों को एक नया डिजिटल बाजार मिल गया है। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब तेजी से फैलने लगी है। स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को एक नया जीवन मिल गया है। तो मिला जुला कर भारत में सोशल मीडिया एक डिजिटल चौपाल है जहां लोग मिलते हैं, भिड़ते हैं और सीखते भी हैं। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की नज़र से कैसा है सोशल मीडिया। यहाँ अगर कुछ शब्दों में मैं कहूँ तो वो कूल, कैजुअल और कॉफ़ी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का अंदाज थोड़ा अलग है। यहाँ लोग कहते हैं नो वरीज मेट, पहले एक फ़ोटो डालते हैं फिर काम शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया की कुछ अपनी खासियतें हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर बीच लाइफ, कैंगरू सेल्फी और कॉफ़ी आर्ट सबसे ज़्यादा चलती है। फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स इतने क्रिएटिव हैं कि खोई हुई बिल्ली भी 10 मिनट में मिल जाती है। लिंक्डइन यहाँ लगभग नेशनल नेटवर्किंग स्पोर्ट है। टिकटॉक पर ऑस्ट्रेलियाई ह्यूमर सीधा, सरल और थोड़ा सा सेटायर बहुत

0: की ताकत मिल रही है और सरकारी घोषणाएं सीधे जनता तक पहुंचती है। शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक अभियान चलाए जाते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज को सोशल मीडिया एक मंच देता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का टोन है स्मार्ट, क्वाइट और थोड़ा सा ह्यूमर। अब देखते हैं ग्लोबल कनेक्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया का कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। सोशल मीडिया ने दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब ला दिया है। भारत में बैठा कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ देख सकता है। सिडनी में रहने वाला कोई भारतीय परिवार अपने गांव की शादी लाइव देख सकता है। दोनों देशों के क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं। भारतीय त्योहारों की रौनक ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेंड बन जाती है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की हर जीत भारत में भी मीम्स का त्यौहार बन जाती है। सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा, जुड़ा हुआ और कभी कभी थोड़ा सा नॉइजी बना दिया है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया हमें सिखाता क्या है? सोशल मीडिया हमें सिखाता है दोस्तों, खाना खाने के पहले फोटो खानी चाहिए। लोल का मतलब हंसना नहीं, ये बस एक औपचारिकता निभाना है। सीन का मतलब जवाब देना नहीं होता। और सबसे बड़ा सबक, अगर कुछ वायरल हो जाए तो समझ जाना कि इंटरनेट का मूड आज अच्छा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? सोशल मीडिया एक दिन नहीं, एक दुनिया है। 30 जून का वर्ल्ड सोशल मीडिया डे हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि कनेक्शन, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी की ताकत है। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। थोड़ी हंसी, थोड़ी सीख और ढेर सारा स्क्रीन टाइम। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझदारी से करें, वरना आपकी पुरानी फोटो किसी दिन मीम बनकर सामने आ सकती है। धन्यवाद
1: भाई साहब। ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
3: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आशा है कि आपको रंजना जी की मनोरंजक जो वार्ता थी बहुत अच्छी लगी होगी और उन्होंने सारे पहलू कवर तो कर लिए हैं। लेकिन हमारे सामने बैठे हुए हैं संजय जी और शैलजा जी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है शैलजा जी?
4: सोशल मीडिया तो इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप बगैर सोशल मीडिया के कहीं रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो लोकप्रियता है उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट चीज़ें हैं उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं तो संजय जी से पूछूंगी, संजय जी आपने क्या प्रकाशित किया है इस विषय में?
5: देखिए, इसमें मेन जो बात है, ये बात सही है कि इसमें तमाम अच्छी बातें हैं। आपके पास एविडेंस मिल जाता है एज ए वकीलों के लिए कि साहब किसी ने कहीं कुछ हो रहा है तो उन्होंने उसकी वीडियो बना लिया और फटाफट जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह डाल दिया और गवर्नमेंट को भी जल्दी नोटिस में आ गया। तो वो सब तो अच्छी बातें तो हैं, लेकिन एक इसमें एक खराबी है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं लोग कि उन्हें जो वास्तविक सकारात्मक जो जो उनको खुद करना चाहिए
4: जी।
5: उसके लिए टाइम नहीं बचता है ना।
4: बिल्कुल,
5: तो उसमें क्या है कि जैसे इसीलिए मैंने नाम रखा कि सिर्फ फुटबॉल ज्यादा होती है, लोग बहस ज्यादा करते हैं और सकारात्मक यूज कम करते हैं।
3: नहीं, बहस कर रहे हैं संजय जी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें आपने एक टर्म सुनी होगी फोमो, FOMO, क्या कहते हैं इसको कि फियर ऑफ मिसिंग आउट।
5: हाँ,
3: मतलब ये है कि जो फेसबुक है वो एक्चुअली फेक बुक है, इस सेंस में कि आप दूसरे की फ़ोटो देखते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, आपको कभी कभी ये लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है।
5: हाँ जी,
3: तो उससे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए
4: तुलनात्मक चीज़ बहुत ज़रूरी है।
3: हाँ, क्योंकि लोग देखते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया।
5: तो वही तो कह रहे हैं, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लिमिट से ज़्यादा हो गए। अब जैसे कि इसका मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप का जो मैंने जो व्यंग लिखा है उसमें ये इस घटना का उल्लेख है कि

0: व्हाट्सएप के एक नुक्कड़ पे दो वकीलों में जो है बहस हुई, विवाद इतना बढ़ा कि एक वकील ने दूसरे को गोली पर गोलियां चला दी, वो भी न्यायालय परिसर में।
1: अच्छा।
0: हुआ यूं कि उस वक्त नुक्कड़ पर यानी व्हाट्सएप पर रात में हुई इस बहस की अगली सुबह उनमें से एक वकील तड़के ही थाने जा पहुंचा। वहां उसने एक विचित्र सी नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने दूसरे वकील पर आरोप लगाया कि उक्त सहकर्मी वकील ने रात को व्हाट्सएप पर उन्हें बहुत भला बुरा कहा, यही नहीं बल्कि उन्हें तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बताइए व्हाट्सएप पे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद वो इस शिकायत की सूचना देने न्यायालय बार अध्यक्ष के दफ्तर जा पहुंचे।
1: अच्छा।
0: अभी वो बार अध्यक्ष बात कर ही रहे थे कि वो दूसरा जो सहकर्मी वकील है वो भी आ गया। उसने आओ देखा न ताओ इनके ऊपर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दाग दी वहीं अध्यक्ष के सामने। बताइए। हाँ, तो इतना ज्यादा बुरा असर भी हो जाता है कि कभी कभी आदमी इतना ज्यादा बहस में आ जाए।
1: ये सही घटना तो नहीं है ना?
0: ये बिल्कुल सच घटना है, हम आपको अखबार की कटिंग भेज सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ
2: बताइए।
1: कमाल।
0: हमने इसीलिए इस लेख पे मैं इसको ऐड किया था इस चीज को, क्योंकि आमतौर पर देखिए क्या है कि भारतीय जो है वो बहस प्रेमी होते हैं, है ना। बहस और मुबाहसे में फर्क तो समझ रहे हैं ना। मुबाहसा वो होता है जिसमें आपने कोई बात कही, मुझे उसके ज्यादा उसके अगेंस्ट या किसी कोई बात मालूम है, जो कि मैंने कहा कि देखिए त्रिदीप जी आप जो कह रहे हैं उसमें एक ये भी है पहलू है, तो वो तो हुआ मुबाहसा। दूसरा आदमी कहता है नहीं प्रदीप जी आप गलत कह रहे हैं, वो हुई बहस। तो दूसरे को खाली गलत बताते रहना, इसके ये बहुत आसान काम है और ये इसके लिए भारतीय बहुत फेमस है।
2: जोश आ जाता है एक बार आप में। लेकिन सोचिए कि समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि साइकाइट्री में एक डायग्नोसिस इंट्रोड्यूस हुई है, नई डायग्नोसिस इंटरनेट एडिक्शन।
1: अच्छा।
2: इंटरनेट एडिक्शन इज नो लेस देन ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहल एडिक्शन। तो श्रोताओं आप लोगों को चाहे कितना ही इसमें उपयोगिता हो लेकिन आपको अपना नियंत्रण उसके ऊपर करना आवश्यक होगा। कि और फिर ये होता है कि हर चीज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में वो सही नहीं होती है। और आपने जैसे कहा प्रदीप जी की हीनता की भावना आ जाती है कि बताइए देखिए इनके यहाँ इतनी पार्टियां हो रही हैं, इतने इनके दोस्त आए, हमारे यहाँ कोई दोस्त नहीं आया, हमारी पार्टी
3: लोगों का डिप्रेशन हो जाता है।
2: और क्या, बिल्कुल डिप्रेशन हो जाता है उससे। तो आपको एक लिमिट में रखना चाहिए कि आप इससे क्या, पढ़ाई लिखाई में अब देखिए जब से कोविड हुआ है तब से तो लगता है कि बगैर इंटरनेट के कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप कहीं भी जाइए आपको ऐप चाहिए, आपको पासवर्ड चाहिए और आपको व्हाट्सएप से मैसेजेस चाहिए। तो एडिक्शन जो है वो गलत चीज होती है।
3: और ये पासवर्ड का चक्कर ऐसा है कि हर 2-3 वीक में चेंज करिए और दिमाग खराब हो जाता है, उसमें अपना ही पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर बारों से पीछे लगते हैं, उसमें ही टाइम बहुत वेस्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता था कि जैसे यहाँ की ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 15 साल से छोटे बच्चों के लिए वो फेसबुक या सोशल मीडिया बैन लगाया हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शैलजा जी आप बताइए पहले।
2: एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरी बेटी जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया अथॉरिटी में सीनियर लॉयर है, तो उसने अभी एक रिलीज लेजिस्लेशन किया है जिसमें कि स्पेसिफाइड है बिल्कुल चीज़ें कि किस उम्र तक आप कौन से सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और क्या इसका रिजल्ट क्या होगा अगर आप पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो स्कूल और पेरेंट्स में सब जगह ये अब लागू होगा कि 12 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं, 14 साल से पहले, 16 साल से पहले आप क्या देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन जो है अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है।
3: लेकिन उसका पुलिसिंग कैसे करेंगे?
2: पुलिसिंग यही करेंगे कि अब आजकल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक नया डिपार्टमेंट उनका होगा जिसमें कि वो सारा का सारा पुलिसिंग करेंगे कि कहाँ किस बच्चे ने कौन सा साइट खोला है। क्योंकि बच्चे जो हैं अगर उनको आप फ्रीडम दे दीजिए तो ऐसे साइट खोलते हैं जो भी आपके नज़रिया में ऑब्जेक्शनेबल हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी
0: देखिए ये पुलिसिंग का जो आपने कहा ना, तो ये आप जान लीजिए कि बड़ा आसान है।
2: अच्छा।
0: ये एक बार अगर आप जो भी लिख इसमें डालते हो सोशल मीडिया पे या कंप्यूटर में या कहीं भी फोन पे, वो सारा आप किसी तरकीब से मिटा नहीं सकते हैं, वो रहता ही रहता है। और जो जो जो जो जहाँ पे आपका इसका सर्वर है वो कभी भी पता लगा सकता है कि कहाँ पे, और सर्वर तो आपके जानते हैं इस वक्त। इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे सारे सर्वर जो हैं वो मेड इन चाइना है। अब सर्वर मेड इन चाइना होने की वजह से समझ लीजिए उनके पास कहाँ कहाँ उसमें लिंक होगा, वो कितना पता लगा सकते हैं आपको. प्लस उन्होंने आपको भी, गवर्नमेंट को भी लिंक दे रखा है कि साहब आप अगर कुछ जानना चाहें तो यहाँ से जान सकते हैं. लॉ एंड ऑर्डर के पास सारा हक है, वो कुछ भी कर सकता है. तो वो तो बच नहीं सकता कहीं से, है ना. तो ये तो है एक बिल्कुल की है. और प्लस दूसरी चीज़ जैसे दीदी ने कहा कि अभी की पढ़ाई लिखाई और वो सब जो है उस सब के लिए टाइम भी चाहिए, वो ना. तो आप अगर टोटल सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो कहाँ से उसे, कहाँ 24 घंटे से 25वां घंटा तो मिलने वाला नहीं है.
3: बिल्कुल ना? बिल्कुल. तो ये और संजय जी एक इसी से रिलेटेड खास बात ये भी है कि पता नहीं यूट्यूब पर कितने कितने मैंने वो देखे हैं कि आपका बैंक हैक हो जाएगा, आपके पैसे गए हो जाएंगे. भारत में तो बहुत हो रहा है, यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के निकल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि कुछ किसी तरह से सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा करने से या अपलोड करने से या किसी लिंक पर क्लिक कर देने से ये तो एक इतना बड़ा हेडेक हो गया है.
0: बिल्कुल. एक जैसे कुछ चीज़ें तो ऐसी जिनको अगर आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि जब आप कहीं पे भी नया पासवर्ड की बाजू बात आपने की पासवर्ड डालते हैं तो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड ऑन इंटरनेट ऑन गूगल. गूगल को आप सेव करा दिए, ऑलवेज से नो, क्योंकि वो तो कभी भी अगर गूगल का पासवर्ड आपका बाई चांस मिल गया जिस ईमेल एड्रेस से आपने अपना गूगल अकाउंट खोला हुआ है, अगर किसी तरह एक मिनट के लिए भी किसी ने वो एक्सेस कर लिया,
3: एनक्रिप्टेड नहीं होता है जब वो सेव करते हैं तो एनक्रिप्टेड होता होगा.
0: उसकी ट्रिक है कि वो इनक्रिप्शन भी देखिए, कंप्यूटर इज अ वेरी वीक यूनिट, बहुत ही कमजोर यूनिट है, क्योंकि पता नहीं है इसलिए हम बचे हुए हैं बस.
3: बिल्कुल.
0: तो उसमें समस्या यही है कि अगर वो एक बार भी उसको अगर एक बार घुस गया किसी तरह से कहीं, उसमें तमाम वो ऑप्शन है. एक एक एक वो है मिस्टर अमित दुबे करके, उनके पॉडकास्ट आप देखिए.
3: मैं देखे
0: हैं. हाँ, वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि हम कितने कितने कमजोर हालत में हैं.
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल, बहुत ही. तो वो जो है अगर एक सेकंड को भी उसको मिल गया आपका एक्सेस तो आपके सारे पासवर्ड फटाफट देख लेगा वो एक मिनट, बल्कि प्रिंट करके रख लेगा.
2: लेकिन बेसिक जो रूल है वो है, अगर आपको अगर आप पहचानते नहीं है किसी भी लिंक को तो आप उस पर क्लिक
0: मत कीजिए, सीधी सी बात
2: बस ये है.
0: और खास तौर से कुछ तो बिल्कुल बेसिक रूल ऑफ थंब रख लीजिए कि आप जो भी आपके पास ईमेल आता है ईमेल से कोई चीज एक्सेस मत कीजिए. ईमेल में आता है क्लिक हेयर, वो कभी मत कीजिए. आप अगर उस साइट के ऑलरेडी आपका पासवर्ड है तो उस साइट पे जाइए, साइट पे अपना पासवर्ड डालिए, वहां भी वो मैसेज आया होगा, इनबॉक्स वहां भी है, जो वो ईमेल आपको भेजते हैं उस वही ईमेल वो उस इनबॉक्स में भी भेजते हैं. तो वहां देखिए जाके ना, यहाँ कह लिए इसमें चक्कर पड़े.
3: बिल्कुल बिल्कुल. तो संजय जी ऐसा है कि हमारा समय बहुत जल्दी से बीता जा रहा है और हम अब बात करने जा रहे हैं दुर्गा शक्ति.
2: दुर्गा शक्ति
3: ऐसा है कि 1970 के दशक में बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पर आए थे अपने अपने परिवार के साथ और ऐसा लगता है कि कुछ दुर्गा शक्तियों को बडिंग दुर्गा शक्तियों को साथ में लाए थे और हमारी महिलाएं ने यहाँ आकर जो आपने कार साज की डेफिनेशन बताई कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ऊंचाई तक भी पहुँची. और
0: शैलजा जी भी कार साज ही हैं, चुपचाप अपना काम करती रहती हैं.
3: शैलजा जी बहुत बड़ी कार साज हैं.
0: बिल्कुल.
3: और शैलजा जी ने उन दुर्गा शक्तियों को कंपाइल किया है, ये नाम दिया है इन्होंने दुर्गा शक्ति इंडियन वीमेन फ्रॉम डाउन अंडर. इस बुक की मैं फोटो शेयर कर दूंगा, इसके सामने बड़ी सुंदर सी एक दुर्गा बनी हुई है.
2: ओ, मैंने कॉन्फिडेंशियली बता दिया है प्रदीप जी को ये कौन है उनके अतीत से.
3: अच्छा. और इसमें 21 सिडनी के नहीं यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की 21 दुर्गा शक्तियों का नाम दर्ज है और उनमें से एक दुर्गा शक्ति हमारे सामने शैलजा जी बैठी हुई हैं.
2: अब आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं ये कह के तो, लेकिन दुर्गा शक्ति महिला, क्योंकि भारतीय महिलाओं का पूरा अगर आप देखिए विश्व में उनकी जो इमेज है वो ये है कि न तो पढ़ी लिखी होती हैं और ना वो कोई बाहर घर के बाहर काम कर सकती हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 1970 में जब मैं होम विजिट के लिए गई किसी के घर में तो पूरे मुझे लगा कि जैसे कि मैं एक स्पेसिमेन हूँ क्योंकि पूरे परिवार जो था मुझे देखने के लिए आया कि इंडियन डॉक्टर, फीमेल इंडियन वुमन डॉक्टर, उन्होंने कभी सुना नहीं था, उन्होंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था कि भारत की औरत भी डॉक्टर हो सकती है. तो उस वक्त मुझे अपमान लगा ये अपना कि हमारे भारत में वैदिक काल से महिलाओं का इतना आदर हुआ है, हमारे माँ का कितना बड़ा आदर होता, भारत माँ होती है, पृथ्वी माँ होती है, और यहाँ ये देख रही है, यहाँ यहाँ परिवार मुझे देख रहा है कि पहली भारतीय महिला है. और सच ये है कि 1865 में सबसे पहली जो हमारे यहाँ की थी मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वो यहाँ पे आई थी, और उनका नाम था देखिए कि आनंदबाई जोशी. 1865 में वो फर्स्ट मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी थी. ऑस्ट्रेलिया में जो पहली महिला थी वो 2 साल बाद हुई थी उसी यूनिवर्सिटी से.
3: अच्छा अच्छा.
2: तो पहली जो महिला थी डॉक्टर वो इंडियन डॉक्टर थी. और महिलाएं जो हैं भारत की कहां से कहां पहुंचती हैं. और ये मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में एक से एक बढ़कर महिलाएं हैं. अगर हम सबका उसमें अपनी किताब में अगर सबका हम विवरण देते तो ये पॉसिबल नहीं था. और जैसा कि अभी हमें संजय जी ने कहा कि ये तो 21st सेंचुरी है, इसलिए हमने 21
0: 21वीं सदी की 21 महिलाएं ले ली.
2: 21 महिलाएं हैं और हमारे यहाँ 21, 11 और जो एक नंबर होता है उसको हमारे बड़ा ही शुभ माना जाता है. तो इसलिए हमने इस पुस्तक में 21 महिलाओं के विवरण दिए हैं जिन्होंने कि आशातीत सफलता पाई अपने अपने क्षेत्रों में. और सबसे बड़ा मेरा भाग्य था, सौभाग्य था कि मेरी जो को ऑथर हैं शिबा नंदकिलियोकर, तो वो जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है. तो उनकी भी सहायता थी कि उनका कांटेक्ट बहुत सारे हैं और शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन. वो भी रह चुकी हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, बहुत सारे उनकी भी हैं. तो इसमें हमने अपने अपने क्षेत्र में जिन महिलाओं ने अपनी ऊंचाई तक पहुंची हैं, जो पहली महिलाएं हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त की है, तो हमने उनका विवरण इसमें दिया है. तो बार बार हमें विश्व को बताना पड़ता है कि भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं. अगर आपको मैं बताऊं कि जो हालांकि भारत की रैंकिंग जो है जेंडर डाइवर्सिटी 134 है, लेकिन फीमेल पायलट्स इन इंडिया आर 12.4%.
3: अच्छा.
2: ऑस्ट्रेलिया में 5.8%. अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 12% फीमेल पायलट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5.8% हैं. और सोचिए कि 1936 में सरला ठकराल, वो जो सबसे पहले उन्होंने प्लेन की पायलट 1934 में a female was a plane pilot. One of the important thing is that superior management में, क्योंकि अब आजकल हर जगह हम यहाँ पे भी सब जगह ये कहा गया है कि कमिटीज में जिस कमिटी में भी महिलाएं रहती हैं उसकी ज़्यादा सफलता होती है.
3: बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद महिलाएं अपना कार्य के लिए ज्यादा सिंसियर होती हैं.
0: अंदर जी मल्टी स्किल होती है ना, हम लोग एक बार में एक काम करते हैं,
3: एक काम करते
0: हैं. महिलाएं जो हैं एक साथ दो काम कर सकती हैं, है ना, तो उसमें वो उनको एडवांटेज हो जाता है. दे कैन डिवाइड देयर ब्रेन इन टू पार्ट्स और फोर पार्ट्स और समथिंग.
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ये सोचिए कि मेल माइंड जो होता है वन ट्रैक होता है, फीमेल माइंड जैसा आपने कहा ना मल्टी स्किल्ड है. और ये है कि इमोशनल क्वेश्चन आजकल IQ होता है और EQ भी होता है. तो महिलाएं जो होती हैं वो पूरा का पूरा संदर्भ लेती हैं. आप सिर्फ देखते हैं कि ये 8:30 बजे काम करने आ सकती है कि नहीं. महिला जो है वो देखेगी कि बच्चों को बच्चों का इंतजाम हो गया है कि नहीं हो गया है. एंड आई थिंक वो जो है इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने मेरे विषय में ये सोचा हो कि इस बच्चों को इसने खाना दिया है कि नहीं, तो मेरा आपका जो संबंध है उससे कहीं ज़्यादा गूढ़ हो गया. मैं सोचूंगी कि आपने कम से कम ये तो सोचा कि मेरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो इसलिए भारतीय महिलाएँ जो हैं वो काफ़ी आगे हैं. तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में महिलाएं जो है 39% अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 31. इंडिया में लोग सोचते हैं औरतें घर ही में रहती हैं, लेकिन 39% इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन एंड वर्ल्ड एवरेज इज 31%. इंडिया में 98% बिजनेसेस में कम से कम एक महिला रहती है, और जबकि विश्व में इसकी परसेंटेज 90 है, 90% है, हमारे यहाँ 98% है, हर बिजनेस में एक महिला रहती है। तो इस तरह से और मिड मार्केट बिजनेस में भी इंडिया कहीं आगे, 47% मिड मार्केट बिजनेस में महिलाएं होती हैं और 26% ग्लोबल एवरेज है। तो इस तरह से देखिए कि भारतीय महिलाएं पीछे नहीं हैं। फिर विश्व में आके हमारा सबसे बड़ा भारतीय हम लोग हैं, हर जगह हम जाते हैं, समय हो रहा है तो मैं संक्षेप में बस बताना चाहूँगी कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं, हम कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि हमारे भारत की इमेज खराब हो। और भारतीय महिलाओं ने भी वही किया है कि हम जहाँ भी गए हैं, एक किताब फिजी में निकली थी, बहुत ही अच्छी किताब, फिजी माँ, तो उनका क्लेम था कि फिजी की जो संस्कृति है वो पुरुषों से नहीं, फिजी की माँ से,
3: बिल्कुल
2: माँ से संस्कृति उसकी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये पुस्तक जो है ये आवश्यक है हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके लिए बड़ी इंस्पायरिंग होगी किताब।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो शैलजा जी, ऐसा है कि समय की कमी तो है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सब दुर्गा शक्तियों का, जो आपने 21 दुर्गा शक्तियाँ हैं, उनका नाम पढ़ दूँ, और आप चाहें तो उनके बारे में एक एक सेंटेंस बताते हैं,
0: रैपिड फायर राउंड।
3: नंबर एक, अनीता बरार।
2: अनीता बरार जी जो हैं वो SBS की ब्रॉडकास्टर हैं, वो बहुत डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कई सारी बनाई हैं, लेखिका हैं वो और पत्रकार हैं।
3: आस्था तोमर
2: ये जो हैं, ये सबसे पहली फीमेल साइकाइट्रिस्ट जो कि कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट की प्रेसिडेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। एंड ये जो हैं सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट हैं।
3: बारबरा वार्ड
2: जो है फिजियन है और ये पॉलिटिशियन है।
3: करिश्मा कलियंडा
2: ये भी पॉलिटिशियन है,
3: यहाँ आ चुकी हैं हमारे स्टूडियो।
2: जी हाँ, और ये बेंगलोर की हैं और ये लिवर वेस्टर्न सिडनी में MP हैं।
3: डॉक्टर चंद्रकांता गरियाली
2: जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी थी वहाँ तमिलनाडु में, IAS ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, लेकिन ये रहती हैं न्यूकासल में।
3: अच्छा, डॉक्टर मर्लिन कांगा AO।
2: मलिन अजाद ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अभी जो है वर्ल्ड इंजीनियरिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोटेड है कि यहाँ पे कितना अंडरएस्टिमेट किया जाता है इतनी पढ़ी लिखी और इतनी इम्पोर्टेंट स्त्री को। तो इंजीनियर हैं, IIT बॉम्बे की।
3: अच्छा अच्छा, डॉक्टर रजनी आनंद लूथरा
2: जो है ये भी, इन्होंने PhD की है साइकोलॉजी में, लेकिन ये जो है इंडियन लिंक में की एडिटर हैं।
3: डॉक्टर पैडी परकाला
2: ये हैं, लॉयर हैं यहाँ पे, इनकी भी अपनी अपनी कंपनी है।
3: जयश्री कुलकर्णी
2: ये जो है ये साइकाइट्रिस्ट हैं और ये पहली प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री थी मेलबर्न में, फीमेल इंडियन।
3: कुमुद मीरानी
2: ये भी मशहूर जानी मानी हस्ती हैं यहाँ की, SBS में की ये रह चुकी हैं बहुत सालों, इन्होंने करीब 35 से 40 साल काम किया कुमुद जी ने,
0: हिंदी के लिए बहुत काम किया।
2: लीसा सिंह जो है एंग्लो इंडियन, समझिए ये तस्मानिया की हैं और इन्होंने ये भी पॉलिटिशियंस रह चुकी हैं।
3: माला मेहता
2: इन्होंने पहला स्कूल हिंदी का आरंभ किया था, ये भी सिडनी की हैं।
3: मीनू शर्मा
2: जो हैं ये हैं, इन्होंने भी अपना एक ये जर्नलिस्ट हैं और इनका भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है।
3: मीतू भौमिक
2: जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से,
3: यस, ये हमें पास दिया करती थी
2: जी, हाँ।
3: मौलिनी अस्थाना
2: ये लॉयर हैं और इन्होंने भी यहाँ काफ़ी कुछ पहली पहल की है।
3: प्रीति बजाज
2: ये जो है इनकी अपनी कंपनी है और इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है जो कि पहल है भारतीय महिलाओं में।
3: प्रोफेसर वीना सहजवाल
2: वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, वो भी बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की हस्ती हैं, कानपुर की ग्रेजुएट हैं ये।
3: अच्छा,
2: IIT।
3: रीत फुलवानी
2: कितना
3: रीत फुलवानी
2: ये फुलवानी, ये जो है ये भी एंटरप्रेन्योर हैं और इनका भी बहुत कुछ कोलैबोरेशन है। सबा आबदी या सबा जैदी, ये जो है ये भी बहुत जानी मानी हस्ती हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया रेडियो में वहाँ पे इंडिया में काम कर चुकी थी। अच्छा। यहाँ पे इन्होंने, इनका टेलीविज़न अपना था, स्टेशन था। अब सबा जी जो हैं वो काफ़ी सारे ड्रामे वगैरह करती हैं और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा की ग्रेजुएट हैं। ये भी बहुत बड़ी जानी मानी मस्ती है, हस्ती हैं।
3: और आपने 21वां नाम दिया है सोनिया गांधी का, ये सोनिया गांधी यहाँ कहाँ से आ गई?
2: ये सोनिया गांधी जो है इतनी कन्फ्यूजिंग है, जब मैं पहली बार मिली तो मैंने कहा आपकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं मिलती, तो तो ये सोनिया गांधी जो है इनका नाम पहले तो और था, लेकिन उन्होंने चूंकि शादी की, वही हिस्ट्री है कि ये हैदराबाद की हैं और ये जो हैं ये मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं सोनिया गांधी, लेकिन ये वो अपनी वो वाली सोनिया गांधी इटालियन नहीं है, ये भारतीय हैं, हैदराबाद की हैं और इनके पति का नाम है गांधी।
3: अच्छा, ऐसा है कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी सर्विंग एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सपोर्टिंग ग्लोबल मेडिकल कोलैबोरेशन। शैलजा जी, आप नंबर वन दुर्गा शक्ति हैं
0: जी,
3: हमारे कार्यक्रम में आप आती हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि आप हमारे साथ।
2: ये तो आपकी जरा नवाजी है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं तो सोचती हूँ कि सब कुछ भगवान की तरफ से होता है।
0: नहीं, हम आपके बारे में एक शेर कहना चाहेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए।
0: कि ये मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ।
2: अच्छा अच्छा।
0: कि बस यूं ही ना गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रस्तों से।
2: वाह वाह, क्या।
0: बस यूं ही ना गुजर जाएंगे हम इन पेचीदा रस्तों से, हमारे कदमों के निशान कल और भी गहरे होंगे।
2: अरे वाह, अगर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरी किस्मत होगी।
0: किसी राख के ढेर से आने लगे जो आंच तुम्हें, बहुत मुमकिन है कि हम उस राह से गुजरे होंगे।
3: अच्छा, ऐसा है कि हमारा समय अब समाप्त होने की तरफ जा रहा है, तो हम एक
2: गीत,
3: फिल्म आई थी आनंद, 1970s की फिल्म थी,
2: बिल्कुल
3: राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन,
2: ये तो बहुत ही बड़ी
3: बात। जब ये रिलीज हुई थी तब इसको ज्यादा लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू किया तो ये इट बिकेम वन ऑफ द वेरी हिट फिल्म्स। अच्छा, इसी का एक गीत है, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है, सुनिए।

0: कभी तो हंसाए।
1: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शैलजा जी, हमारे रिएक्शंस आए हुए हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को बता दें कि शैलजा जी ने दुर्गा शक्ति पर एक वीडियो लगाया हुआ है, बहुत सुंदर वीडियो है, उसे आप जरूर देखें। इसके बाद राजेश जी लिखते हैं, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। लीला तिवानी जी, ज्ञानवर्धक समाचारों के बाद प्रेरक विचार और मधुर भजन से आज का दर्पण रेडियो का शुभारम्भ मंगलमय रहा। नितिन कुंदप कहते हैं कि धन्यवाद दर्पण टीम, महत्वपूर्ण चर्चा इनकम टैक्स पर। अच्छा, मोहिनी जी ने कुछ लिखा था, डिलीट क्यों कर दिया मोहिनी जी? नितिन कुंदप कहते हैं, आशा है सीजीटी के बारे में भी बात होगी, इट्स द मोस्ट अपसेटिंग रूलिंग फ्रॉम द ईयर्स बजट। तो ये हम किसी और प्रोग्राम में कवर करेंगे अगले साल के लिए। ऋचा जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो हमने पूछ लिया है। राजीव निगम जी बोलते हैं, नमस्कार जी, इट इज़ रियली नाइस टू हियर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन वी कैन डू इन कनेक्शन विद द डिपॉजिट इन आवर सुपर डायरेक्टली टुडे विद थ्रेशहोल्ड ऑफ 30,000। थैंक्स, वेरी गुड डिस्कशन ऋचा जी, धन्यवाद। अच्छा, इसके लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, संजय जी के लेखन की कहानी कुछ कुछ हमसे मिलती है। लीला तिवानी जी, आपको यहाँ आकर हमें बताना होगा उस कहानी के बारे में, हालांकि आप यहाँ पर कई बार आ चुकी हैं, लेकिन एक बार आकर संजय जी से मिलती जुलती कहानी
3: बिल्कुल
2: से जरूर सुनेंगे।
3: और क्या, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनती हैं
2: और कमेंट करती हैं।
3: बिल्कुल,
2: टैक्स पर यतीन जी की वार्ता बहुत ज्ञानवर्धक रही, इसमें से बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं थी, लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं। दुबे जी बोलते हैं, राम दुबे, गुड टू हियर द टैक्स प्लानिंग बाय वाई जी एंड संजय क्रिएटिव स्ट्रीक। आशिमा जी बोलती हैं, वेरी गुड प्रोग्राम। लीला तिवानी जी फिर बोलती हैं, वाह सोशल मीडिया डिजिटल चौपाल लीला तिवानी। राजीव निगम जी बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इफ एम्प्लॉय रेज इनवॉइस टू द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट इन विच ही इंक्लूड्स द GST इन द एवर इनवॉइस। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यतीन जी से आप डायरेक्टली बात कर लीजिए यहाँ पर।
4: सही बात है,
2: इस ग्रुप में उनका नंबर है, आप उनसे बात करिए, उनको बड़ी खुशी होगी कि आपने दर्पण के माध्यम से उनसे बात की। मृणाल जी बोलते हैं, संजय जी को उनकी ही जुबानी सुनना एक विशेष अनुभव है, उनका लेखन सार्थक और कड़े प्रश्न भी उठाता है। रंजना जी की डिजिटल चौपाल एक साधे हुए निबंध सा लगा। प्रदीप जी और शैलजा जी की प्रस्तुति तो विशेष होती है, दर्पण रेडियो को आज के अंक के लिए आभार। अरे मृणाल जी, आप कहाँ छुपे हुए हैं, हम तो आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे।
3: ढूंढ रहे हैं कि आप आ जाएं इस रेडियो प्रोग्राम में।
2: हाँ, रेडियो प्रोग्राम में आइए।
4: बड़े बढ़िया कवि हैं।
2: हाँ, उनकी हिंदी बहुत
4: कविता
2: परिष्कृत हिंदी।
4: हाँ, परिष्कृत हिंदी के अलावा बहुत सारगर्भित लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं,
2: बहुत बढ़िया,
4: और छंद का ज्ञान बहुत अच्छा।
2: और आपसे भी यंग है।
4: मैं मिल चुका हूँ, मेरी किताबें ये भी पढ़ते हैं।
2: अच्छा,
4: मेरी किताबें ये भी पढ़ते हैं।
2: राजीव निगम जी बोलते हैं, समटाइम्स पीपल बिकम एडिक्ट ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, लीला तिवानी जी फिर ने बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने, सोशल मीडिया पर रंजना जी की वार्ता बहुत शोध के साथ लिखी, अत्यंत ज्ञानवर्धक लगी लीला तिवानी। अच्छा, इन्होंने दिखावे की दुनिया, दिखावे के लोग, सोशल मीडिया बना स्वयं
3: भयंकर रोग,
2: सबसे
4: भयंकर रोग, क्या बात है।
2: अच्छा, दो लाइन और पढ़ूंगा, आभासी इस दुनिया में केवल है आभास, लाइक कमेंट बढ़ते रहे एक यही है आस।
3: जरूर जरूर,
4: बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहा
2: आभास,
4: बिल्कुल सही,
2: पूरा तो समय नहीं है, इसे फिर से आप पढ़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे जाकर. राजीव निगम जी आज बड़े एक्टिव हुए हैं. रियली सरप्राइजिंग टू नो द क्रिमिनल इंसिडेंट बाय प्रोटेक्शन लॉयर. रमेश जोशी जी बोलते हैं, नमस्कार टू ऑल, जस्ट वांट टू योर व्यूज दैट बिफोर वी केम अक्रॉस दिस सोशल मीडिया फीवर व्हाट हैड हैपेंड.
3: लीला जी आपकी कविता तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा सटीक है.
2: उपाध्याय जी बोलते हैं, सोशल मीडिया दिवस पर रंजन जी की प्रस्तुति काफ़ी सार्थक थी इस और उसके बाद संजय जी द्वारा सोशल मीडिया से संबंधित कुछ आपराधिक घटनाओं का विवरण देना आज के दौर में सोशल मीडिया के महत्व को दर्शाता है. इसी संदर्भ में आजकल एक और अपराध कथा चर्चा में है. पुणे में एक लड़की ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी थी. तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपराधों की सोशल मीडिया का योगदान है. अच्छा, ये बहुत बड़ी चर्चा है, किसी दिन आपसे करेंगे. उपाध्याय जी, आश्रमा जी कहते हैं, कूडोज टू ऑल द इंडियन वीमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन कम्युनिटी. उपाध्याय जी, रैपिड फायर राउंड में शैलजा जी को 10 में से 10 नंबर दे
3: दिया.
4: क्या बात है,
3: क्या पास कर दिया आपने.
2: कहीं नीट पर पेपर आउट तो नहीं
4: पेपर आउट हो गया.
2: और सुनिए, शैलजा जी और संजय जी की लेखनी में जादू है. ऋचा जी बोलती हैं, संजय जी क्या बात कही, शैलजा जी को समर्पित शेर अति सुंदर.
3: वो तो और भी ज्यादा सुंदर था शेर.
4: जी बहुत शुक्रिया.
2: तो शैलजा जी, ऐसा है कि आपने कुछ डिसाइड किया है किसे प्राइज दिया जाएगा.
3: डिसाइड किया है
2: आपने, डिसाइड किया ना कि आप दो टिकट जो गाता रहे मेरा दिल
3: जी,
2: दो टिकट आप किसे देना जा रहे हैं.
3: यस, हम देखिए, हम सोचते हैं कि राजीव जी को टिकट क्यों ना दिया जाए.
2: राजीव जी और मृणाल जी दो हैं.
3: मृणाल जी या राजीव जी. राजीव जी को तो मिल चुके हैं टिकट की.
2: नहीं, मृणाल जी को नहीं मिला है मेरे.
3: मृणाल जी ये
4: कम से कम पकड़ में तो आए हमारे. हाँ
3: बिल्कुल,
4: बहुत जरूरी है उनको.
3: हमारे
4: जिस दिन मृणाल जी को बुलाइएगा हमें बुला लीजिए.
2: अच्छा ठीक,
4: साथ ही साथ आएंगे.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
3: हमारे यहाँ हमारे देश में घूस चलती है खूब की. तो ये प्रदीप जी आप घूस दे रहे हैं
4: सरेआम रेडियो पर.
3: सरेआम रेडियो पे आपके अगेंस्ट पूरा एक्शन लिया जाएगा मृणाल जी.
2: बिल्कुल. अब देखिए, हमारा समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है. तो सबसे पहले हम संजय जी से पूछेंगे कि आपका अंतिम शब्द हमारे लिए कुछ बोल दीजिए.
4: मैं दो गीत की लाइनें पढ़ दूं, वो ज़्यादा सही.
2: बिल्कुल जल्दी जल्दी से जल्दी से.
4: ये एक तरह से ये है कि आपका जो मतलब जो हम लोग जिस तरफ दुनिया जा रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा कि उसके प्रति जागरूक होना चाहिए. सोशल मीडिया में जो कमियाँ हैं या जहाँ कहीं भी हैं, जो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं उसके से रिलेटेड है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि यूं सांसों ने घोटा है दम ये मेरा, भरोसा हवाओं पे कम है जरा, मुझे ख्वाहिशों से न बहलाइए, अंधेरों से गहरा है सपना तेरा, यूं अपना गुलिस्तां दुरुस्वा करे, भरोसा तेरा यार कैसे करूं, जो अपने चमन से

0: कैसे कहूँ।
1: बहुत सुंदर संजय जी, बहुत बढ़िया, आप यहाँ आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए। और शैलजा जी, तो हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और हम लोगों की ओर से हमारे श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार।
2: नमस्कार
3: और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतना समय दिया हम लोगों को। इस हमारी सफलता इसी में है कि हमारे श्रोतागण इससे कुछ पाए।
2: बहुत सक्रिय योगदान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
3: यस,
1: और ये है कि मैं अपने श्रोताओं से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारा कार्यक्रम चल रहा हो तो कमेंट जरूर करें, कुछ वीडियो वगैरह अगर आपको डालने हैं तो उसके बाद डाला करिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आप अपना कमेंट लिखिए, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और सिर्फ ये नहीं कि आप हमारी तारीफ करिए, आप हमारी कमियों में भी बताइए या किस तरह से हम इसे और अच्छा कर सकते हैं, ये
3: वही तो असली चीज़ है। हाँ, कि क्या हम नहीं कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के साथ हम एक गीत छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और ये भी फिल्म कट्टी पतंग से ही है और किशोर कुमार की आवाज़ में है, तो आशा है आपको पसंद आएगा।
3: अब एक बार हमें किशोर कुमार का प्रोग्राम पूरी पूरे उत्साह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर
1: बिल्कुल
3: कलाकार थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।